सर्वसौदी समन्विते स्वयंभो त्राही मां देवी दुर्गे देवी नारायणी नमोस्तुते येष पुष्पाञ्जलि सनातने गुणाशये गुणोमयी नारायणी नमोस्तुते येष पुष्पाञ्जलि श्रीमद्दुःखिनाथलिकाय नमो नमो सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यस्तम्भके गौरी नारायणी नमो।